हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव

0: ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन की शांति सबसे महंगा गहना है, उसे संभाल के रखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा में अब से कुछ ही मिनट में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200 6:35 पर। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। 7 बजे भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है राजुल अशोक का। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक करण जोहर पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहत नामा, थायराइड की बीमारी और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर लीजा बनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है रामकरण मीणा की। 11 बजे सुनिए राम रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता।

माफ कीजिएगा, 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग, कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। 7 आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। आठ बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग, लेखन है सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशन है दीनानाथ। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 आपके लिए, 10 सुनिए छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्त होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी, हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ, स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों पर चर्चा की जा रही है आजकल संगीत सरिता कार्यक्रम में। और श्रोताओ, आप तो जानते ही हैं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: नमस्कार श्रोताओं, पिछले कड़ियों में मैं आपको सुना रही थी कुछ कर्नाटक शैली के रागों के बारे में, जिनके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि कतन कुतूहलम, अमृतवर्षिणी और मंगलम, यानी कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती रागों के बारे में। तो आज से शुरू करते हुए मैं आपको एक ऐसे वाद्यकार और संगीतकार के बारे में परिचय देना चाहती हूँ, जो न केवल दक्षिण के केरला प्रांत में एक जाने माने महाराजा थे, बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभ दास वंची भूपाल श्री रामवर्म कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति तिरुनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन। इनके पिता राजराज वर्मा थे और

माताजी का नाम था महारानी गौरी लक्ष्मीबाई। माँ का छोटी उम्र में ही देहांत होने के वजह से स्वाति तिरनाल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वीं साल में स्वाति तिरनाल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियां लिखी बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियां सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इनमें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदि ताल, देशादि ताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाएं या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाएं, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति तिरनाल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ, जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि। यह कृति 16 मात्र के आदि ताल में निबद्ध है।

0: फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत जो राग वृंदावनी सारंग पर आधारित था अभी आपने सुना। आवाजें थी हेमंती शुक्ला और येसुदास की। कल इसी क्रम में आपको सुनवाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी हमारे श्रोता समाचारों से पहले विविध भारती के कार्यक्रम को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। पूर्वाह्न के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम आवाज।
3: दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे सासाराम प्रखंड के बड़ुई गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों सफाई क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए, ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को पनपने का मौका न मिल पाए। यदि ये कीड़े यानी बीमारी फैलाने वाले कीड़े पनपने लगेंगे, इन्हें पनपने या फैलने का मौका मिल जाएगा, तो ये हमें, हमारे आसपास के लोगों को किसी न किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश करने लगेंगे। इसलिए हमें अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई करना बहुत ज़रूरी है और आसपास के लोगों को भी ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग अपने आसपास के गली की सफाई, नाली की सफाई और अपने घर की सफाई भी करते रहें, ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े आपके

0: करीब न आ सकें। दोस्तों, रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के बड़ोई गांव के लोगों से हमने बात की। ये गांव यानी बड़ोई गांव करसेरुआ पंचायत में पड़ता है और जगजीवन नहर के बहुत करीब बसा हुआ है, यानी कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। गांव में आने जाने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध है। फिर भी हमने गांव के लोगों से बात की और जानना चाहा कि इसके अतिरिक्त गांव के लोगों को और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं बड़ोई गांव के लोग अपने गांव में नाली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। नाम अपना बता दीजिए।
1: राजेश्वर सिंह।
0: गांव का नाम?
1: बड़ोई।
0: पंचायत?
1: करसेरुआ।
0: करसेरुआ पंचायत में पड़ता है बड़ोई गांव। सबसे पहले आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ अभी बनानी बाकी है?
1: लगभग पूरा हो चुका है।
0: कुछ बाकी भी है?
1: बाकी नहीं है, सब पक्कीकरण हो चुका है गली का।
0: लगभग जब सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है तो आने जाने में परेशानी नहीं होती है या गली बनने के बाद भी परेशानी होती है?
1: नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है।
0: कोई परेशानी नहीं होती है। नाली के बारे में बताइए। नाली बनाई गई है आपके यहाँ गलियों में?
1: नाली चारों तरफ नहीं बना हुआ है,
0: कुछ बाकी रह गया है
1: नाली बनाना। पानी का निकासी बहुत कम है।
0: अभी तक जिन जिन गलियों में नाली बन चुकी है उन गलियों के लोगों के घर का पानी जो नाली बनी है उससे निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: नाली बनने के बाद भी गली में कहीं कहीं पानी जमा रहता है, लगा रहता है।
0: इसकी वजह
1: लोग सर सफाई नहीं कर पाते हैं,
0: गंदगी की वजह से, कूड़े करकट
1: की वजह से, प्लास्टिक वगैरह के चलते सब भर जाता है नाली, सफाई नहीं करने के कारण जमा होता है।
0: अगर इसकी सफाई कर दी जाए तो पानी निकलने में कोई परेशानी नहीं?
1: कोई परेशानी नहीं।
0: आपके गांव में बिजली रहती है कि नहीं?
1: बिजली रहती है।
0: वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज कम बस ठीक रहता है, कभी कभी वोल्टेज आंधी तूफान से मान लीजिए कम बेस रहता है।
0: मोटर वगैरह चल जाती है?
1: हाँ, मोटर वगैरह भी चलती
0: है। बिजली की बिल के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए।
1: अनियमित आता है बिजली बिल, जो है ना, अनियमित आता है।
0: अब तो 125 यूनिट फ्री कर दी गई है तो इसका लाभ गाँव के लोगों को मिल रहा है?
1: हाँ, मिल रहा है।
0: मिल रहा है ना। आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है कि नहीं?
1: है, विद्यालय है, मेरे ही गांव में है।
0: अच्छा, कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
1: 5 क्लास तक।
0: 1 से 5 तक?
1: 1 से 5 तक।
0: आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है और 1 से 5 तक पढ़ाई होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो 1 से 5 तक पढ़ाई करने के बाद आपके यहाँ के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं?
1: सकास, बगल का गाँव है सकास।
0: सकास जाते हैं पढ़ने के लिए? तो सकास यहाँ से कितनी दूरी पर लगभग पड़ता है आपके गांव से?
1: 1 किलोमीटर।
0: अच्छा, बहुत नज़दीक।
1: बहुत नज़दीक।
0: आने जाने में कोई परेशानी?
1: वही अषाढ़ वगैरह में जाने में परेशानी होता है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। बड़ोई से सकास जाने के लिए रास्ता पक्की नहीं है, कच्ची है, तो अषाढ़ में दिक्कत होता है।
0: तो फिर बच्चे जाते कैसे हैं? छोटे
1: वैसे ही छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, जूता उत्ता निकाल करके पैंट मोड़ के चले जाते हैं।
0: आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं आपके यहाँ?
1: हमारे यहाँ है आंगनबाड़ी केंद्र
0: है। उसके बारे में कुछ बताइए।
1: आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, ठीक है, चलता है, रोज खुलता है, बंद होता है, ठीक चलता है।
0: जो आपके यहाँ स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उस स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बताइए। बाउंड्री है कि नहीं? पीने के लिए वहाँ चापाकल है कि नहीं?
1: नहीं, बाउंड्री भी है, पीने के लिए चापाकल भी है और ये मोटर भी है,
0: सारी फैसिलिटी।
1: हाँ, फैसिलिटी है।
0: पढ़ाई के बारे में कुछ अगर बताना चाहते हैं तो बताइए।
1: पढ़ाई में दम नहीं है, बच्चे जितना विकास करना चाहिए उतना विकास नहीं कर पाते हैं यहाँ के।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: नल जल का योजना जो है वो हमारे यहाँ फेल्यूर है, ढंग से पानी नहीं मिलता है।
0: पाइप
1: जहाँ तहाँ फटा हुआ है, कटा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है।
0: आपके यहाँ चूँकि 2 वार्ड है?
1: हाँ, 2 वार्ड है।
0: तो दोनों वार्ड में पानी की सप्लाई हो रही है?
1: नल जल तो बैठा हुआ है, 1 वार्ड का तो कहना ही नहीं है। मैंने वहाँ जब से बैठा तब से पानी हमारे यहाँ तक पहुँचवे नहीं किया। इसका आता है पानी कभी काल तो ये जहाँ तहाँ कटा उटा है, पानी आ नहीं, पहुँच नहीं पाता है। चलता है नल लेकिन पहुँच नहीं पाता है।
0: नल लगाई गई है?
1: हाँ,
0: नल
1: डैमेज है।
0: पानी जो कह रहे हैं कि 1 का कभी नहीं सप्लाई हुआ,
1: उसका भी नल कटा हुआ है, जहाँ तहाँ उधरे पानी रह जाता है। यहाँ तक पाइप बिछा हुआ है, जहाँ तक पाइप बिछा हुआ वहाँ तक पानी नहीं जा पाता है।
0: कितनी बार सप्लाई करते हैं लोग?
1: सुबह शाम।
0: पानी की क्वालिटी?
1: पानी ठीक ठाक है।
0: जब पानी आता है तो पीने के काम में लोग लेते हैं?
1: पानी पीने के काम में लेते हैं।
0: अगर वो पानी नहीं आता है

0: तो आप लोग फिर पानी कहाँ से?
1: वही चापाकल से ढोते हैं हम लोग।
0: चापाकल से?
1: हाँ, चापाकल का भी व्यवस्था नहीं है, एक आध दो चापाकल है, डूब जाना पड़ता है 500 मीटर तब जा करके पानी उठाते हैं।
0: अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो ऐसे में पानी का कंडीशन क्या है? आसानी से मिल जा रहा है या चापाकल वगैरह सूख चुकी है?
1: चापाकल सूख चुका है, किसी किसी चापाकल में जो सरकार द्वारा गलाया हुआ है वो ला चलता है, बाकी चापाकल बंद हो गया है।
0: बाकी बंद हो गया?
1: हाँ, सबसे दिक्कत है मवेशी को पानी पीने के लिए, यहाँ जो है चापाकल पे पानी चलता नहीं है, तो मवेशी को पानी पीने के लिए दिक्कत है। मवेशी यहाँ से जाती है 3 किलोमीटर तक पानी उसको मिलता है पीने के लिए
0: नहर में।
1: हाँ, नहर में
0: कुछ दूरी पर नहर।
1: हाँ, 3 किलोमीटर मान के चलिए।
0: खेती करते हैं आप लोग?
1: हाँ, खेती हम लोग करते हैं।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: वही धान गेहूँ मुख्य फसल है।
0: सब्जी की खेती?
1: सब्जी की खेती बहुत कम है, नाम मात्र का है।
0: बेचने के लिए नहीं की जाती?
1: नहीं, बेचने के लिए नहीं की जाती।
0: जब आप लोग खेती करते हैं तो पटवन का साधन क्या है?
1: जिनके पास बोरिंग है वो अपना खेती करते हैं, पटाते हैं।
0: आपके गांव से कुछ ही दूरी पर नहर है?
1: हाँ,
0: क्योंकि बगल में कुसड़ी गांव है, उसके बगल में नहर है।
1: हाँ,
0: तो वो नहर का पानी नहीं आ पाता है?
1: उस नहर से पानी हम लोग के पास नहीं आता है, हम लोग के पास अषाढ़ में पानी आता है, वो करमचट डैम वाला पानी, यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है, जंगल के पास है,
0: उधर से आता है।
1: हाँ, ये जगजीवन नहर से पानी हम लोग के पास एक बूंद भी नहीं आता है।
0: अच्छा, इससे लाभ नहीं मिलता?
1: नहीं मिलता है, जबकि 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
0: खेती करने के बाद जो अनाज आप लोग पैदा करते हैं उसको बेचते भी हैं?
1: बेचते हैं।
0: बिक जाता है आसानी से?
1: हाँ, सस्ता महंगा बिकी जाता है।
0: खेती करने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है, ये सब आसानी से मिल जाती है?
1: आसानी से नहीं मिल पाता है। खाद के लिए तो महामारी है, लाइन लगना पड़ता है तब जाकर मिलता है। बीज का भी हाल वही है, ब्लॉक में किसी किसी को मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला।
0: दोस्तों, अभी आप सासाराम प्रखंड के बड़ुई गांव के लोगों से की गई बातचीत सुन रहे थे। बड़ुई गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं KL परदेशी, संगीतकार उत्तम जगदीश, और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: दोस्तों, अभी आप पेंटर बाबू फिल्म का गीत सुन रहे थे। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं सासाराम प्रखंड के बड़ुई गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। नाम अपना बता दीजिए।
1: मेघनाथ सिंह।
0: गांव का नाम
1: बड़ुई।
0: पंचायत
1: करसरुआ।
0: करसरुआ पंचायत में बड़ुई पड़ता है। सबसे पहले आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बाकी भी है?
1: गली कुछ बन ही चुके हैं, अब कुछ इसी
0: बाकी भी है।
1: बाकी भी है।
0: जो गली बन चुकी है अभी तक, उसमें परेशानी होती है कि नहीं आने जाने में?
1: नहीं, परेशानी कुछ नहीं होती
0: उसमें। नहीं होती है। जो नहीं बनी है उसके बारे में?
1: उसके बारे में कुछ परेशानी होती है।
0: परेशानी होती है, पानी लग जाता है।
1: पानी लग जाता है।
0: कीचड़ भी होता है।
1: कीचड़ भी हो जाता है।
0: नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
1: नाली बने हुए हैं
0: सभी गलियों में।
1: सभी गली में नाली बने हुए हैं।
0: जब सभी गली में नाली बन चुकी है, तो बनी हुई नाली से गली के घर का पानी निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: घर का पानी निकल जाता है, नाली में गली में जम हो जाता है।
0: आखिर क्यों?
1: वो अथु भी ना खबड़ा बड़ा पानी पूरा खींचत में गई, पानी साम देता था, इधर पानी बात में चाँप देता।
0: नाली सही तरीके से नहीं बनाई गई है?
1: नहीं बने हैं,
0: इसीलिए जम होता है।
1: हाँ।
0: बिजली रहती है आपके यहाँ?
1: हाँ, बिजली रहती है।
0: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
1: ठीक है।
0: ठीक है। मोटर वगैरह चल जाती है?
1: हाँ, चल जाती है।
0: चल जाती है। बिजली बिल के बारे में बताइए। बिजली बिल कम आती है या ज़्यादा आती है या ठीक आती है?
1: ठीक आते हैं।
0: ठीक आती है।
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं है। 125 यूनिट तो फ्री कर दिया गया है, उसका लाभ मिल रहा है?
1: हाँ, अभी लाभ मिल रहा है, पाछे में क्या होगा।
0: हाँ, अभी लाभ मिल रहा है। नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी आपको आपको पीने के लिए मिल रहा है?
1: नहीं, नल का पानी नहीं मिल रहा है।
0: आपके घर में नल लगाई गई है या घर के बाहर?
1: लगे हैं।
0: लगी है?
1: लगे हैं। नल का पानी पहुंचते नहीं है वहाँ।
0: अभी नहीं आ रहा है या कभी नहीं आया?
1: पहले थे आते, बाकी अभी नल का पानी नहीं आते। अभी पुल लगाकर काट दिया है नल पाइप।
0: अच्छा, पाइप कटने की वजह से नहीं आ रहा है?
1: पाइप कटने की वजह से पूरा पानी दबाव में वहाँ नहीं पहुँच रहा है।
0: अभी तो भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा भी चल रही है, लू भी लग रही है, पानी की स्कार्सिटी हो चुकी है, कमी है। तो ऐसे में आपके यहाँ जो चापाकल है ना चापाकल,
1: हाँ,
0: वो पानी दे रही है या सूख गई?
1: पानी वो दे रही है।
0: दे रही है।
1: हाँ,
0: कोई पानी कोई दिक्कत नहीं है?
1: नहीं, अब तो बहुत लंबा सफर पड़ता है ना, लंबा सफर पड़ता है।
0: कोई ऐसी भी चापाकल है या कुआं है जो सूख चुका है अभी?
1: हाँ, कुल सूख चुका है।
0: सूख चुका है।
1: हाँ,
0: तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग?
1: कल से,
0: मतलब कुछ चल रही है?
1: हाँ, कल कुछ चल रहा है। गाँव के लोग जाकर वहाँ पानी भरता है, वहाँ पानी भरता है।
0: मतलब दूरी पर जाना पड़ता?
1: दूरी पर पड़ता है।
0: खेती करते हैं आप?
1: हाँ।
0: पटवन कैसे करते हैं?
1: बिजली से।
0: नहर का पानी नहीं आता है?
1: नहर का पानी आषाढ़ में आता है।
0: आता है? ये आपके बगल से जो नहर गुजर रही है, इस नहर
1: नहीं,
0: का
1: नहीं,
0: पानी
1: करमचा टोली आता है?
0: ये नहीं आता है जो कुसड़ी के बगल में जाती है?
1: नहीं,
0: ये तो बहुत नज़दीक है।
1: नज़दीक है तो

0: नहीं चढ़ेगा वो।
1: अच्छा, इधर से नहीं आता है। खेती करते हैं तो बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है। ये सब आसानी से मिल जाती है?
0: आसानी से कहाँ मिल जाती है, आसानी से मिलती कहाँ। खाद का समय आएगा तो खाद बंद हो जाता है, बीज नहीं मिलता है, बीज तो कभी मिलते नहीं है।
1: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
0: है, वहाँ रंगपुर है।
1: आपके गांव में नहीं है?
0: नहीं है।
1: कोई अगर बीमार पड़ता है आपके यहाँ तो आप लोग इलाज कैसे कराते हैं?
0: सासाराम ले जाते हैं।
1: सासाराम जाना पड़ता है, जो रंगपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आप लोग जाते हैं कि नहीं?
0: जाते हैं, उसी दवा से कुछ फायदे नहीं होता है।
1: कोई फायदा नहीं मिलता?
0: नहीं,
1: मिलता है। आपके यहाँ स्कूल कौन सी है मालूम है? स्कूल है ना आपके यहाँ सरकारी?
0: हाँ।
1: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
0: पाँच क्लास।
1: पाँच तक होती है, उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने?
0: सकास।
1: सकास जाना पड़ता है। सकास जाने में कोई परेशानी होती है कि नहीं बच्चों को?
0: कहाँ परेशानी होती नहीं, बरसात में ऐसे जाते हैं यार धकर, पानी लगता है।
1: पक्की सड़क नहीं है जाने के लिए?
0: नहीं, पक्की सड़क नहीं है।
1: आपके यहाँ चूँकि करसरुआ में भी हाई स्कूल है, प्लस टू स्कूल है, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं आपके यहाँ के?
0: नहीं,
1: दूर पड़ता है।
0: दूर पड़ता है, सकास से कुछ नज़दीक पड़ता है।
1: बड़ोई गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं हमारे बीच खड़े हैं, बड़ोई गांव के ही हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: नाम मेजर सिंह, ग्राम बड़ोई, पंचायत कसरुआ।
1: सबसे पहले आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ बाकी भी रह गई है अभी?
2: नहीं, सभी हो गया है।
1: सभी हो गया है। जब लगभग सभी गली बन चुकी है तो आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: नहीं, आने जाने में सही है।
1: बनने के बाद कोई परेशानी नहीं? नाली बनेगी है आपके यहाँ की गलियों में?
2: नाली बना है।
1: सभी गलियों में?
2: सब में बना है।
1: सब में बना है। जब सब गली में नाली बन चुकी है तो गली के घर का पानी बनी हुई नाली से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
2: नहीं, निकल जाता है।
1: निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है?
2: कोई दिक्कत नहीं।
1: बिजली रहती है आपके यहाँ?
2: हाँ, बिजली रहती है।
1: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
2: ठीक रहता है।
1: वो भी ठीक रहता है। बिजली बिल के बारे में बताइए।
2: बिजली बिल मीटर वाला जो नया स्मार्ट मीटर लगा है उसमें ज़्यादा आ रहा है।
1: 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है, इसका लाभ मिल रहा है लोगों को?
2: सभी को मिल रहा है।
1: मिल रहा है। आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है कि नहीं?
2: है।
1: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
2: 5 तक।
1: उसके बाद बच्चे को कहाँ भेजते हैं आप लोग पढ़ने के लिए?
2: सासाराम, करसरुआ, सकास।
1: सकास। सकास बच्चों को जाने के लिए कोई परेशानी?
2: हाँ, परेशानी है, यहाँ से रोड नहीं है, इसे लाठ वोट पकड़ के जाता है बारिश में।
1: बरसात में कैसे जाता है बच्चा?
2: बरसात में उसे लाठ ढक जाता है।
1: आने जाने में परेशानी है। नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोग को मिल रहा है?
2: मिलता है, आधा आदमी को मिलता है, आधा आदमी को नहीं मिलता है।
1: आपके गाँव में चूँकि दो वार्ड है तो दोनों वार्ड में सप्लाई हो रहा है?
2: हाँ, दोनों वार्ड में।
1: आपके घर में आता है कि नहीं?
2: हमारे घर में आता नहीं है, अगल बगल यहाँ से पास नहीं करता है, बंद है फिलहाल में।
1: जब आ रहा था तो कितनी बार आ रहा था दिन भर में?
2: दो बार
1: आ रहा था।
2: जो कितना के घर में शुरू से ही पानी नहीं गया है।
1: जिन लोगों के यहाँ पानी आ रहा था वे लोग पानी यूज कर रहे थे?
2: हाँ, यूज कर रहे थे।
1: पीने के काम में लेते थे?
2: पीने के काम में लेते थे।
1: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है?
2: नहीं
1: है। पेशेंट का आप लोग इलाज कैसे कराते हैं?
2: छोटा मोटा ऐसे गाँव घर में प्राइवेट डॉक्टर ही है तो उसी में होता है, बाकी सासाराम में होता है।
1: सासाराम जाना पड़ता है। आपके पंचायत में है कि नहीं?
2: पंचायत में एक है, वहाँ दरीगाथू में, रंगपुर में।
1: रंगपुर में है, वहाँ आप लोग नहीं जाते हैं?
2: जाते हैं।
1: इलाज हो जाता है?
2: हल्का फल्का।
1: खुलता है वहाँ?
2: हाँ, खुलता है। सर्दी बुखार का दवाई थोड़ा बहुत मिल जाता है।
1: आपके यहाँ जो स्कूल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ाई कैसी होती है, बिल्डिंग कैसी है?
2: बिल्डिंग मिला जुला के ठीक है, पढ़ाई में कोई जान नहीं है।
1: स्कूल पर आने जाने के लिए पक्की सड़क है कि नहीं?
2: पक्की सड़क।
1: स्कूल के अंदर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से है या नहीं?
2: है।
1: कोई दिक्कत नहीं होती?
2: नहीं।
1: जो आपके यहाँ स्कूल है उसमें आप ही के गांव के बच्चे पढ़ते हैं या आसपास के गांव के भी आ जाते हैं?
2: हमारे ही गांव के बच्चे पढ़ते हैं।
1: आप ही गांव के? खेती करते हैं आप लोग? कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
2: धान, गेहूं, यही सब होता है।
1: बेचते भी हैं?
2: हाँ, बेचते भी।
1: बिक जाता है आसानी से?
2: नहीं, बेचने में तो दिक्कत है।
1: पटवन का साधन क्या है आपके यहाँ?
2: वही थोड़ा बहुत बिजली से पटवन हो जाता है और नहर वहर भी लगता है सीजन पे।
1: आपके बगल में कुसड़ी गांव है, उसके बगल में नहर है, बहुत नज़दीक 1 किलोमीटर के अंदर ही लग रहा है। उस नहर का पानी आता है कि नहीं?
2: नहीं, नहीं आता।
1: उसका नहीं आ पाता है तो फिर कौन सी नहर का पानी आता है?
2: करमचट के आता है, दुर्गा
1: उधर से आता है।
2: हम लोग लास्ट स्टेज पर है, पीछे आता है।
1: कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप लोग?
2: धान, गेहूँ, उधर जंगल की तरफ नहर वहर होता है।
1: इधर जंगल तक जाता है आप लोग का?
2: वहाँ जंगल तक सट के।
1: सब्जी की खेती करते हैं कि नहीं आप लोग?
2: थोड़ा बहुत होता है खाने पीने का, पहले जैसा

0: बिक्री वाला नहीं होता है।
1: और कुछ कहना चाहेंगे?
0: यही कहना चाहेंगे कि जो लाइन जब से यहाँ आया है सब बिजली का तार वगैरह सब चेंज नहीं हुआ है, जहाँ तहाँ कटा है, गिरता है, जोड़ता है, सब देख रहे हैं इधर उधर ना,
1: परेशानी होती है
0: बहुत बहुत।
1: मान लेते अगर तार टूट जाता है तो बन जाता है आसानी से?
0: नहीं, आसानी से नहीं बनता, इंतजार करना पड़ता है 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा।
1: अच्छा, 8 घंटा तक क्या अंतराल पर बन जाता है? मिस्त्री लोग आ जाते हैं?
0: हाँ, शाम को टूटेगा तो कल सुबह में आएंगे, शाम में नहीं आएंगे।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के करसेरुआ पंचायत के बड़ुई गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आवाज़ आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 MHz पर। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम लोक माधुरी में सुनते हैं भरत शर्मा ब्यास को। कुंजन के गीत है, भरत शर्मा ब्यास का संगीत है, एल्बम है राजा पिया जनी।

मुन्ना सिंह के गाए इसी पारंपरिक गीतों के साथ है। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अब हम सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार, इसके अंतर्गत सुनते हैं कुछ भोजपुरी एल्बम गीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुलायम यादव की आवाज़ में तारकेश्वर मिश्रा राही ने इसे लिखा है, संजय पांडे ने संगीत दिया है। एल्बम है जल्दी आवा मदन मुरारी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम रसधार के आखिर में सुन लेते हैं किरण पांडे की आवाज में एक गीत। तारकेश्वर मिश्रा राही ने इसे लिखा है, संजय पांडे ने संगीत दिया है, एल्बम है बालम बहरा बाड़े।

किरण पांडे के गए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम थोड़ी देर में।

दुर्गा माँ इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।

नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना यार के

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब जी। हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अ वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजॉय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने

0: पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों से छूलू तुम मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदिवर ने इसे लिखा था।

आपकी कसम, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे, दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना?

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कम कपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की तीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियां पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल। और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय, कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है, और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, मेंटली इमोशनली, तो जरूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहां आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

जिसे संगीत दिया समीर ने, इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं, सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर। जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि एक हो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर।

और एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था, और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आंखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूं मैं अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात काली एक ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुड्ढा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना? साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है।

जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी। जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है, वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज्जा के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के विधि विधान पूरे कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 175,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
2: पश्चिमी परिसंचरण के प्रभाव से अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में विभिन्न स्थानों पर आज तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज प्रथम क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर हाट सहित कई स्थानों पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बिक्री रोकने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित मछली जब्त की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भेवड़ा ओवर ब्रिज पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2,859 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखपुरा, अररिया समेत विभिन्न जिलों में बकरीद के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जिम्मेदारी संभालने के बाद मुल्क ने जबरदस्त खुद एतमादी और एक नए सकाफती निशात सानिया का तारीखी लम्हा देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नवीन ने वजीर आजम मोदी की क्यादत वाली हुकूमत की बेहतर हुक्मरानी और कौम अव्वल के जज्बे से मुतासिर गुज़श्ता 12 बरसों की मुद्दतकार को एक तारीखी सफर बताया। बीजेपी कौमी सदर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के बुनियादी मंत्र और अंत्योदय के आला उसूलों की बुनियाद पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को एक नई सीमत अता की है। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली कोटे से भरी जाने वाली बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 9 सीटों के इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन की ऐलानिया के मुताबिक इन सीटों पर इंतखाब 18 जून को कराया जाएगा। उसी दिन शाम को वोटों की गिनती की जाएगी। तफसीली प्रोग्राम के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक कागजात नामजदगी दाखिल होगी जबकि 11 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौ, सुनील कुमार सिंह समेत 9 अराकीन की मुद्दत कार 28 जून को पूरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई काउंसिल की सीट के लिए भी ज़िमनी इंतखाब 18 जून को कराए जाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में सालाना हज बैतुल्लाह का आज दूसरा दिन यौम अरफा है। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए पहुंचे पूरी दुनिया के लाखों मुसलमान आज मैदान अरफात में जमा हैं और मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ हैं। मैदान अरफात में ईमान परवर नजारा है।

बिहार के 2500 से ज्यादा आजमीन इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद हिंदुस्तान के अफसरान ने बताया कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी आजमीन के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। रियासत के अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत शुमाल मशरकी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर आज तेज आंधी के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्त 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर जालेबारी की भी खबर है। इधर रियासत के जनूबी हिस्से में शदीद गर्मी पड़ रही है। महकमे मौसमियात ने आज भी रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की फातह टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। मगरबी चंपारण के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना इंचार्ज चंद्रशेखर कुमार को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। थाना इंचार्ज पर फरायज में लापरवाही का इल्ज़ाम है। सहरसा जिले के पत्थरघाट ब्लॉक के तहत विशनपुर हाट समेत कई मकामात पर ममनुआ थाई मांगुर मछली की फरोख्त को रोकने के लिए जिला माही परवर अफसर की क्यादत में छापेमारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान कसीर मकदार में ममनुआ मछली जब्त की गई। अररिया जिले के जोकीहाट थाना इलाके के तहत भेवड़ा और ओवरब्रिज पर गाड़ी जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2,859 लीटर गैर मुल्की शराब जब्त की है। इस सिलसिले में एक स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा समेत मुख्तलिफ अजला में बकरीद के पेश नज़र DM और SP ने अमन कमेटी की मीटिंग की है और ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1230 पदों पर भर्ती के योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc। कृपया पुनः सुन लें, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू

0: www.bpssc.bihar.gov.in। इसे एक बार फिर से बता रहे हैं, www.bpssc.bihar.gov.in। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के 190 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का पता नोट कीजिए। पता है www.indianarmy.nic.in। इसे फिर से सुनिए, www.indianarmy.nic.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आप

0: आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे

0: अभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने

0: ने ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी
1: जी
0: मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने लगते
1: महसूस
0: हैं।
1: करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं
0: हाँ
1: वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं
0: हाँ
1: भाई अभी
0: अरे
1: तो
0: क्या
1: क्या
0: बात करने वाली है
1: बोलने
0: आज
1: क्या बोलने वाली है।
0: तो बताओ आज क्या बात करने
1: तो
0: वाले हैं हम।
1: देखिए ना, देखिए जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया है तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी है खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
0: तो
1: के।
0: मुझे लग रहा है मंजरी कि
1: जी
0: तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये
1: जी
0: सारे काम हो जाने चाहिए।
1: नागनी मैम, देखिए नागनी जी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती है ना ये हर घर में होती हैं।
0: जी
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी
0: हाँ,
1: ऐसी चीजें
0: मेरे घर में तो
1: होंगी।
0: ये हो ही रहा है कि भाई
1: अच्छा
0: हमारे घर के कुछ
1: जी
0: लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
1: बिल्कुल
0: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि
1: बिल्कुल
0: भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर
1: बिल्कुल
0: पर ही हैं।
1: हम घर पर हैं।
0: हाँ
1: और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
0: आनंद
1: एक
0: भी
1: एक
0: आता है।
1: आनंद भी आता है, और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना
0: तब
1: दाकिनी जी,
0: भाग दौड़ से
1: तब
0: काम
1: भाग
0: होता
1: दौड़
0: है।
1: मचती है कि भैया
0: बिल्कुल
1: अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
0: वही
1: मिलेगा।
0: अधूरापन मिलेगा,
1: हाँ
0: अव्यवस्था
1: तो
0: मिलेगी,
1: मतलब
0: ये
1: कहने का
0: होता
1: मतलब
0: है।
1: है खुद
0: हाँ
1: से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे
1: जी
0: तो वो काम नहीं होता है। अब आप
1: बिल्कुल
0: खुद आगे बढ़िए और बताइए कि
1: जी।
0: आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
1: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके
0: ओहो
1: बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें
0: हाँ, लिखे ये
1: कि
0: कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही
1: या
0: हैं।
1: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा
0: हाँ,
1: है
0: ऐसी
1: ऐसा।
0: जिंदगी में हमारे साथ
1: जी
0: हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा
1: हाँ
0: बहुत बार होता है हमारे अपने
1: बिल्कुल
0: घर में ही। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं, कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने एक और आपने बात मान ली तो
1: हाँ
0: आप कान की कच्ची हो, उसका मतलब।
1: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर
0: हाँ
1: भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा
0: अच्छा
1: लगे।
0: लगे।
1: और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: सुनते हैं
1: चलिए
0: ये गीत।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना, या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
0: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर घर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं, तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि। और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर

0: हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो
1: बिल्कुल
0: आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा।
0: क्या बात
1: तो वही
0: है?
1: बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए, एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती ही वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल

0: बंद कर दीजिए ऐसा कहते हैं, और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई ये गाना कितना सटीक है ना
1: हाँ
0: नंदाग्नि जी
1: बिल्कुल
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
1: बिल्कुल
0: सफल आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंत्री ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: है। और ये
0: तो
1: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना।
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी
1: हाँ
0: सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका घई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। हाँ
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
0: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो
0: जी
1: राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया।
0: जी, और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड्स 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए

0: प्रेरणा का स्रोत हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

के रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो
0: कान
1: ऐसा
0: का कच्चा होना बहुत गलत
1: बिल्कुल
0: बात
1: वो
0: है।
1: कान की कच्ची है भी नहीं।
0: हाँ
1: और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते हैं।
0: विश्वास कर लेता
1: तो
0: है।
1: ऐसा
0: तो ऐसे
1: नहीं होना
0: हाँ ऐसे
1: चाहिए।
0: कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं
1: बिल्कुल
0: कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना,
0: हाँ
1: वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना।
0: सबसे बड़ी
1: कोई
0: बात,
1: दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी तो क्यों आप उसके उस पर
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जाननी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो
1: जी
0: दमगम
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: आप
1: बात
0: खुद अच्छे बने, है ना, खरा
1: बिल्कुल
0: सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब
1: बिल्कुल
0: आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि
1: बिल्कुल
0: आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: पड़ता
1: सबसे
0: है।
1: पहले तो
0: हाँ
1: इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
0: बिल्कुल,
1: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
0: डिगा
1: बातों
0: नहीं
1: में
0: सकता।
1: डिगा नहीं सकते जिसे
0: हाँ
1: कहते, वो
0: मतलब
1: होना
0: अपने
1: चाहिए
0: किरदार को हमें मजबूत बनाना
1: जी।
0: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला,
1: उथल
0: इधर
1: पुथल
0: इधर ढुल गए उधर ढुल
1: नहीं,
0: गए,
1: नहीं थाली
0: आपका
1: निकांगन
0: कहा
1: जिसे कहते वैसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: उधर
1: चाहिए
0: उसकी बात सुन ली, उधर उसकी
1: जी
0: बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपके जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो
1: जी
0: देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं
1: बिल्कुल
0: ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है,
1: जी
0: ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और
1: जी
0: ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता,
1: जी
0: तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है, इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए।
0: बहुत
1: हमारी
0: अच्छा,
1: सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या

0: लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
0: मतलब
1: ऐसे लोग जो
0: गोपनीयता जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना
0: मतलब निकालने
1: के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते
1: हम्म,
0: थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे, खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा
1: मौसमी
0: दिए
1: फल
0: जाते थे,
1: थे जो,
0: मौसमी
1: हाँ
0: फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जन्माष्टमी में
1: हाँ
0: अक्सर
1: होते
0: होते
1: हैं बिल्कुल।
0: थे, और
1: और ये एक रोचकता
0: जी
1: बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता
0: बड़ा
1: है शादी विवाह में,
0: बहुत
1: जब इस
0: अच्छा
1: तरह
0: माहौल
1: की
0: होता था। और
1: छुटपुट मजाक होती
0: जी,
1: है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल
1: पर बड़ी
0: लगाना नहीं
1: सादगी
0: है,
1: से वो जनवासा
0: हाँ
1: होता था, दिखावटी दिखावट
0: दिखावटी
1: कहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: थी।
0: मतलब
1: हाँ
0: अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी
1: हाँ
0: वही
1: होते
0: लोग
1: थे।
0: होते थे,
1: हाँ
0: और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी, तो उसका
1: बिल्कुल
0: भुगतान जो
1: वे
0: कहते हैं ना वो लड़की वालों
1: लड़की
0: को
1: वाले
0: करना
1: ही करते थे।
0: पड़ता।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी,
1: सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं
1: बिल्कुल
0: सबकी।
1: आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ
0: जी
1: जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
0: बिल्कुल, वो
1: बार।
0: अपने हिसाब से देखिए सब
1: हाँ
0: लोग अच्छा ही करते
1: बिल्कुल,
0: थे,
1: और मन से
0: मन
1: व्यवस्था
0: से
1: होती
0: करते
1: थी।
0: थे, और
1: हाँ
0: जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और
1: हाँ
0: भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
1: बिल्कुल
0: तरह के भी उनको
1: रूठ लिए
0: सुविधाएं।
1: मनाने की जो
0: हाँ
1: बातें भी बहुत होती थी,
0: बहुत
1: कोई
0: होती
1: नाराज हो जाता था
0: थी
1: उसको मनाया
0: बिल्कुल।
1: जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
0: तो
1: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर
0: संभाल
1: रखना
0: के
1: पड़ता था
0: रखना।
1: क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते
0: जी,
1: थे ना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था तो बड़ा
1: हाँ
0: मजा आता था, लेकिन वो गाने
1: लेकिन
0: बहुत अच्छे
1: हाँ ये
0: थे,
1: गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: जान होते थे। सही
1: एक
0: बात
1: श्रोता
0: है।
1: लिखती है कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं, बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
1: कर
0: करना आते
1: देते
0: थे।
1: थे।
0: बिल्कुल,
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की

0: ये लिखते हैं कि जन्माशय ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माशय वो स्थान है जहां पर दूल्हा और बाराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माशय भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा,
1: नहीं
0: ये
1: खड़ा
0: सब
1: है,
0: भी चीजें होती
1: बिल्कुल
0: थी।
1: बिल्कुल,
0: और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना
0: हाँ
1: हर चीज प्रोवाइड कराना,
0: बिल्कुल।
1: हर पूरा एक
0: और
1: जिम्मेदारी
0: बड़ा
1: बन
0: मजा भी
1: जाती
0: आता
1: थी।
0: था कि भाई
1: हाँ
0: अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
1: मिल
0: परसा
1: रहा
0: जा रहा है। तो
1: है,
0: इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
1: चूहलबाजी भी होती
0: चूहलबाजी
1: थी।
0: टाइप की भी
1: हाँ
0: होती थी, तो
1: बिल्कुल
0: बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: हाँ अब
0: सब
1: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि
0: हाँ
1: होटल भी दूर दूर होते हैं
0: बिल्कुल
1: और अभी कई चीजें बदल गई हैं ना,
0: बदल गई।
1: वो
0: होटल में एक साथ
1: चीजें
0: खाना खा
1: शादियां भी
0: रहे
1: होटल
0: हैं
1: में हो गई हैं, घरों
0: जी
1: में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
0: बिल्कुल,
1: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
0: सारे
1: जाते थे,
0: कार्यक्रम।
1: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
0: लेकिन मुझे
1: जिसका।
0: तो वो जन्माशय वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद
0: तो
1: आते हैं।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर
1: हाँ फिर
0: बाकी
1: बात
0: संदेश
1: करते हैं।
0: लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए, तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी, तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये।

0: उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासे यानी वो जगह जहां बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनियां गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है।
0: हाँ,
1: आम लगे हैं।
0: हाँ,
1: अब बराती लगे तोड़ने में।
0: हाँ,
1: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी,

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बारातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: खुशबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई
0: बिल्कुल
2: है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: बिल्कुल आज वापस यादें हो गई ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात,
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में
1: वाद्य वृंद बनाना, वो भी उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता है,
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM सारे
0: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से, बोल लीजिए वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी।
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।

0: ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
0: जी,
1: और भी बदमाश
0: और भी।
1: होता है।
0: तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मा रहे, बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी
1: बहुत
0: से फिल्में
1: चुराए,
0: देखी है।
1: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है,
0: ओहो हो,
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है।
0: थोड़ा
1: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: फिर पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
1: आपने
0: खतरनाक
1: पकड़
0: वाला
1: लिया,
0: किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: उस जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
0: कहीं और पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको, अगर पता चल गया
0: तो क्या
1: तो
0: हाल
1: बाप
0: होता?
1: रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
0: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
0: जी, ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी,
1: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी।
2: रंगे

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो, गजब।
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल
1: यूज नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।

0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे, तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे वो, हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी ला पा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के,

0: वाह वाह वाह
1: जागो
0: वाह,
1: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बचपन
1: वो
0: की
1: चार
0: नींद,
1: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
0: बिल्कुल
1: उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
0: जी,
1: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
0: खतरनाक जी।
1: पर, वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
0: जी जी
1: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
0: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज। वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में। तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, अब सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से

0: से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे, पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे, फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज
0: अनुशासन
1: करते
0: से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल,
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल,
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी,
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे,
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे
1: और
0: शहनाई की तरह बजाते हैं,
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी इसको
1: हमेशा,
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल,
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
1: हाँ,
0: नोट है,
1: बिल्कुल है,
0: ठीक है
1: आखिर में,
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है।

0: अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं।
1: जी
0: आप भगवान नहीं हैं। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है। मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो
0: इसका साउंड
1: आप
0: क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी, तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं लाया
1: कृष्णा
0: इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए।
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले,
0: हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा।
1: क्या प्यारी
0: हाँ,
1: बात है।
0: ये कि हमारे फ्लूट किट में रहता है ये।
1: जी
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है।
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना।
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे। वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता
1: ठीक है, और उसके
0: हूँ।
1: बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
0: मैं
1: हैं फिर
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटी कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है

0: भारत जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल भी जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट

0: घर पे ही बनता है ज्यादातर,
1: और वो ठेठ बनारसी,
0: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
1: जी जी
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
1: हाँ हाँ चोरी चोरी फिल्म का,
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
1: जी
0: तो
1: जी
0: तब का सुना हुआ है।
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया इरे कन्हाई।
0: हाँ। अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ,
1: फिल्म का
0: रजिया
1: गाना।
0: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: ओ हो। तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम।
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक।
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज द बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम, यस।
1: तो आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे।
0: था,
1: अच्छा।
0: ऑलराउंडर ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है।
0: अब तो सर सर बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी,
0: नहीं।
1: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का।
0: विरोध ये था कि अब जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा हूं ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब, तो
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया कहाँ।
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले।
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था। तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में, फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो मजाक।
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
1: फिर वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं नहीं स्कूल से बाहर आ जाते।
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते।
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताई। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे,
0: हाँ,
1: तो
0: वहां पे
1: उनके
0: क्या,
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ,
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुर चलाया
1: जी,
0: उस वक्त पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी

0: आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर के, हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
1: जी,
0: तो पूरा एक हमारा चक्र घूम
1: चक्कर
0: जाता
1: लगता
0: था। तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होकर और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस
0: म्यूजिक
1: अकॉर्डिंगली।
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ,
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए
1: इतने सारे लोग
0: इतने
1: हैं।
0: सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादातर,
1: गजब। यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: से प्लेयर्स रिकॉर्ड
1: और दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
3: As we intend to do.
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
3: As democratic nations,
4: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
3: Will become even more important to the world.
2: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया।

0: ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को, विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन युवाणी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, या माफ कीजिएगा, भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार रिले किया जाएगा। कार्यक्रम किसान वाणी की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल रिले किए जाएंगे। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर हम रिले करेंगे समाचार संध्या। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे गजल का प्रोग्राम महफिल।

विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनिए हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। और रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

जय श्री राम एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे, योगेश बहादुर और सुनीता की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार खुद योगेश बहादुर थे। और अब आइए जय हो बजरंग बली एल्बम का एक भजन सुना जाए। मुख्य

0: जय हो बजरंग बली एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे मुस्कान अग्रवाल की आवाज़ में। और अब भक्ति संगीत कार्यक्रम में और भी भजन सुने जाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शबाब साबरी और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का युवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका अपना ओम प्रकाश। नमस्ते। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे त्याग और समर्पण का पर्व बकरीद, जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी, इस विषय पर भी कुछ बातें होंगी। हिंदी फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे और पशु चिकित्सक बने, करियर बनाएं, इस विषय पर भी हम चर्चा करने वाले हैं।

तो दोस्तों आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं त्याग और समर्पण का पर्व बकरीद विषय पर। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह पर्व त्याग, समर्पण, प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश देता है। पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ईद उल अजहा का अर्थ होता है कुर्बानी का त्यौहार। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा इंसान वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहे। दोस्तों आइए कुछ बकरीद के इतिहास के बारे में जानते हैं। बकरीद का संबंध हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल की महान कुर्बानी से जुड़ा हुआ है। इस्लामी मान्यता के अनुसार एक दिन हजरत इब्राहिम को सपना आया कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांग रहे हैं। हजरत इब्राहिम समझ गए कि उन्हें अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने बिना किसी संकोच के अल्लाह की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। जब वे अपने पुत्र की कुर्बानी देने जा रहे थे, तब अल्लाह ने उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर हजरत इस्माइल के साथ इस्माइल के स्थान पर एक जानवर भेज दिया।

प्रकार हजरत इस्माइल की जान बच गई और तभी से इस घटना की याद में बकरीद मनाई जाती है। बकरीद केवल जानवर की कुर्बानी का त्यौहार नहीं है दोस्तों, बल्कि यह इंसान के भीतर मौजूद अहंकार, लालच और बुराइयों को त्यागने का संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। इस दिन लोग गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। कुर्बानी के मांस को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिस्सा अपने परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और मित्रों के लिए और तीसरा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इससे समाज में समानता और भाईचारे का भावना बढ़ती है। बकरीद के दिन सुबह लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। इसके बाद कुर्बानी की रस्म निभाई जाती है। घरों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे सेवइयाँ, बिरयानी, कबाब आदि। परिवार और मित्र एक दूसरे के घर जाकर खुशियाँ बांटते हैं। बच्चों में इस त्यौहार को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। बकरीद हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। त्याग और बलिदान का महत्व। बकरीद हमें इस भावना से ओतप्रोत करता है कि त्याग और बलिदान का महत्व क्या है। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता, प्रेम, भाईचारा और एकता का भी संदेश हमें मिलता है, और साथ ही मानवता और करुणा की भी भावना का संदेश हमें मिलता है बकरीद से। आज के समय में जब समाज में स्वार्थ और भेदभाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों, तब बकरीद का संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी बकरीद केवल मुस्लिम समुदाय का त्यौहार नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। हमें इस त्यौहार से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में त्याग, दया और सेवा की भावना अपनानी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर इस पावन पर्व के संदेश को अपने जीवन में उतारें और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा दें। और अब आइए इसी के साथ हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, और सुनवा रहे हैं ये गीत।

जी म्यूजिक ओरिजिनल्स का ये एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे पायल देव की आवाज़ में। और अब आइए चर्चा करते हैं जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी विषय पर कुछ। दोस्तों आज मैं आपके सामने जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी विषय पर अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ। यह विषय केवल भाषण या आलेख का विषय नहीं है बल्कि हमारे जीवन प्रकृति और भविष्य से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। प्रकृति ने इस धरती को अनेक प्रकार की विविधताओं से सजाया है, कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं विशाल समुद्र, कहीं घने जंगल तो कहीं विस्तृत रेगिस्तान। इसी प्रकार पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी और मनुष्य रहते हैं। यही विविधता पृथ्वी को सुंदर और संतुलित बनाती है। जब हम जैव विविधता कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हर प्रकार की भिन्नता का सामना करना और उसे सुरक्षित रखना। प्रकृति में जितनी अधिक विविधता होगी पर्यावरण उतना ही अधिक मजबूत और संतुलित रहेगा। दोस्तों जैव विविधता का अर्थ है जीवों और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां, यह प्रकृति का आधार है। यदि जंगलों में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों तो थोड़ी सी बीमारी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पेड़ होने से प्रकृति संतुलित रहती है। इसी प्रकार मधुमक्खियाँ फूलों का परागण करती हैं, पेड़ में ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पक्षी बीज फैलाते हैं और छोटे जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। हर जीव का अपना महत्व है, यदि एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। दोस्तों मानव समाज में भी विविधता का बहुत महत्व है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, पहनावे और परंपराएं हमारे देश को विशेष बनाती हैं। भारत विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस प्रकार प्रकृति में सभी जीव मिलकर संतुलन बनाते हैं उसी प्रकार समाज में भी सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। यदि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी समाज और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे। आज तेजी से

बढ़ती जनसंख्या, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण संकट में है। अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। यदि यह स्थिति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और प्राकृतिक सुंदरता नहीं मिल पाएगी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हमें उठाने चाहिए, जैसे अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाना चाहिए, जल और बिजली की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, पशु पक्षियों और जंगलों की रक्षा हमें अवश्य करनी चाहिए, जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बनाना चाहिए। इस छोटे छोटे प्रयास को अगर हम लोग मिलकर करें तो बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है विविधता। यदि हम प्रकृति की विविधता को बचाएंगे तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति का सम्मान करेंगे, हर जीव की रक्षा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। जैव विविधता केवल एक नारा नहीं है दोस्तों, बल्कि धरती को बचाने का संदेश है। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से गीत और संगीत की दुनिया में हैं।

श्रोता दोस्तों, युवावाणी कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं पशु चिकित्सक बने और करियर बनाएं। श्रोता दोस्तों, पशु चिकित्सा में अपना करियर बनाएं विषय पर अपनी बात कुछ आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम। यह विषय केवल एक पेशे की बात नहीं करता, बल्कि सेवा संवेदना और जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली जैसे अनेक पशु हमारे साथी और सहायक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पशुपालन लोगों की आय का प्रमुख साधन है। ऐसे में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। यही कार्य पशु चिकित्सक यानी वेटरिनरी डॉक्टर करते हैं। पशु चिकित्सक बीमार पशुओं का इलाज करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, टीकाकरण करते हैं तथा पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। ये केवल पशुओं का उपचार ही नहीं करते, बल्कि लोगों को पशुपालन के सही तरीके भी बताते हैं। आज के समय में डेयरी उद्योग, पोल्ट्री फार्म, पशुपालन केंद्र और पालतू पशुओं की देखभाल में पशु चिकित्सकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यदि कोई विद्यार्थी पशु चिकित्सा में करियर बनाना चाहता है तो उसे विज्ञान विषय से 12वीं पास करनी होती है। इसके बाद उसे वेटरिनरी साइंस से संबंधित प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। सफल होने पर वह बीबी साइंस यानी बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस की पढ़ाई कर सकता है। यह कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी अस्पतालों, निजी क्लिनिकों, डेयरी फार्मों, रिसर्च संस्थानों तथा पशुपालन विभाग में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। पशु चिकित्सा का क्षेत्र केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। आज कई युवा अपना निजी क्लिनिक खोलकर भी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की काफ़ी मांग है। इस पेशे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सेवा का भाव जुड़ा होता है। पशु अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए एक पशु चिकित्सक को धैर्य, दया और संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ता है। जो लोग पशुओं से प्रेम करते हैं उनके लिए यह करियर बहुत

ही अच्छा और सम्मानजनक विकल्प है। और दोस्तों आइए आखिर में हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

0: ही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आपन 12 बरस पूरा कर लिहलस। ए मौका पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन कहले कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम संभाले के बाद से देश अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एगो नया सांस्कृतिक पुनर्जागरण के ऐतिहासिक पल देख लेबा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम के भावना से प्रेरित पिछला 12 बरस के कार्यकाल के एगो ऐतिहासिक यात्रा बतौले। भाजपा अध्यक्ष कहले कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एगो नई दिशा दे रहल बानी। सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहला कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव जी कहले कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी बाड़े। श्री यादव कहले कि 12 बरिस में प्रधानमंत्री के निर्णय से देश कठिन से कठिन परिस्थिति में विकास के डगर पर आगे चल रहल बा। निर्वाचन आयोग विधानसभा कोटे से भरे जाए वाली बिहार विधान परिषद के खाली भइल 9 गो सीट पर द्विवार्षिक चुनाव खातिर तारीख के घोषणा कर देले बा। आयोग के विज्ञप्ति के मुताबिक ए सीट पर चुनाव 18 जून के करावल जाई, वही दिन सांझ के मतगणना हुई। पूरा कार्यक्रम के मुताबिक 1 जून के अधिसूचना जारी कर देहल जाई। 8 जून तक नामांकन दाखिल कल जा सकेला, जबकि 11 जून नामांकन वापस लेवे के आखिरी तारीख बा। बता दी कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 गो पार्षदन के कार्यकाल 28 जून के पूरा हो रहल बा। ओइजा आयोग पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा से खाली भइल विधान परिषद की एगो सीट खातिर उपचुनाव भी 18 जून के ही करावे के घोषणा कइले बा। जदयू के वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी दावा कइले बाड़ी कि विधान परिषद के सब 10 सीट एनडीए के खाता में आई। पटना में जदयू दफ्तर में पत्रकारन से बातचीत करत वह कहली कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास बा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहले बड़े कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारन के लेके आखिरी फैसला कर ली है और प्रत्याशी लोगन के घोषणा भी जल्दीये कर दिहल जाई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आवे वाली विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव खातिर एगो सीट के मांग कैले बड़े। श्री मांझी पत्रकारन से बातचीत करत कहले कि हमनी के परिषद चुनाव में सीट मिलला से गठबंधन के फायदा होई। सऊदी अरब में सालाना हज में आज अराफात के दिन बा। एके हज के सबसे जरूरी दिन मानल जाला। इस्लामिक कैलेंडर के महीना जिलहिजा के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदान अराफात में जुटल बाड़े और हज के नियम कानून पूरा कर रहल बाड़े। बिहार के 2552 श्रद्धालु ए हज यात्रा में शामिल बाड़े। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारी लोग बतौले कि ए साल हज करे वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन लोग खातिर बड़ इंजाम कइल गइल बा। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन इनरवा के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिल बड़े। थाना प्रभारी पर ड्यूटी में लापरवाही बरते के आरोप बा। पछुआ हवा के असर से अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सा में अलग अलग जगह पर आज तेज आंधी के साथ भारी बारिश के आशंका बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिला में तेज हवा के साथ मूसलाधार पानी गिर रहल बा। कई जगह पर ओला गिरे के भी खबर बा। ओहिजा राज्य के दक्षिण हिस्सा भीषण गर्मी के मार झेल रहल बा। मौसम विभाग आजू राज्य के दक्षिण हिस्सा

0: में कई जगह पर लू चले के संभावना जताइले बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार श्रोता भाई बहन, आज आपके साथ हम बने सुगिया बहन और हमरा साथ बने पंचू भाई। पंचू भाई नमस्कार।
1: नमस्कार आ सभी किसान भाई बहन लोग के, पंचू भाई के दंडवत।
0: देखिए पंचू भाई, ये जो भीषण गर्मी जोन पड़ रहा बा, ये समय तेज धूप और बढ़त तापमान हमनी के स्वास्थ्य खातिर खतरा बन गई बा। ऐसे एकरा से सावधानी और जागरूकता बहुत जरूरी
1: बहुत जरूरी बा। बहुत
0: देखिए गर्मी के मौसम में लू लगना, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सिर दर्द, थकान और बेहोशी जैसन कई समस्या हो सकता। खासकर बच्चा और बुजुर्ग के साथ बीमार लोग के अधिक खतरा रहेला। एमे हमनी के सबसे पहली बात ध्यान रखे के चाहिए कि पानी खूब पीही। प्यास लगे या ना लगे, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। नींबू पानी, ORS, छाँस, नारियल पानी और सादा पानी के साथ शरीर के ठंडा रखे मदद करेला। और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पिए से हमनी के परहेज करे के चाहिए। दूसरा बात, सुबह 11 बजे के से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर निकले से बची। अगर जाना बहुत जरूरी बात तो सिर पर टोपी, गमछा या छाता रखें और एकरा साथ हल्का रंग के सूती कपड़ा भी हमनी के पहने के चाहिए। हल्का और ताज़ा भोजन करें। तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम के पन्ना और मौसमी फल ज़्यादा खाएं। बासी और तैलीय भोजन से हमनी के बचे के चाहिए। और देखिए शादी ब्याह के भी मौसम चला था, आदमी जातरन शादी ब्याह में खूब जी भर के खा लेता बीमार पड़ जाता।
1: सही बात।
0: देखिए एकरा साथ साथ हमनी के घर के ठंडा रखे खातिर खिड़की दरवाजा सुबह शाम खुला रखे के चाहिए, ताकि हवा के आवागमन जो हो सके। और गर्मी ओकरा बाद फिर दिन में पर्दा लगा देवे के चाहिए, खिड़की बंद कर देवे के चाहिए कि तापमान कम आवे या मत आवे। और ज़रूरत के हिसाब ही से ही AC, पंखा, कूलर के भी हमनी के इस्तेमाल करे के चाहिए। बच्चा और बुजुर्ग खातिर खास ध्यान रखे के चाहिए कि उनकरा के धूप में ज़्यादा देर ना रहे दी, बार बार पानी पिलाएं। और एकरा साथ अगर कमजोरी, उल्टी, तेज बुखार या बेहोशी लगे तो तुरंत हमनी के डॉक्टर से संपर्क करे के चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के लू लग जाए तो ओकरा के तुरंत छाँव में लाएं, शरीर पर ठंडा पानी डाली, गीला कपड़ा डाली और ORS या पानी दी। हालत में गंभीर हो तो तुरंत अस्पताल भी हमनी के
1: ले जाए के चाहिए। तो देखिए ये सब बात कही तो हमने के आगे भी होत रही, लेकिन पहले ही बताएं कि आज के कार्यक्रम में हमने के और का जानकारी मिले वाला बा।
0: जी देखिए आज के कार्यक्रम में हमने के देश विदेश से संबंधित कुछ कृषि समाचार जानल जाए। और फिर ओकरा बाद आज की बातें के अंतर्गत एक भेंट वार्ता हुई। भेंट वार्ता में विषय हुई खरीफ में मोटे अनाजों की खेती। भेंट वार्ताकार होकर डॉक्टर धनंजय तिवारी और यहाँ से भेंट कैले बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। नया दौर नई बातें के अंतर्गत

0: आज हमने के चर्चा के विषय हुई धान का बीज शोधन है जरूरी और आज की नसीहत में एक बार फिर से चर्चा के विषय हुई गर्मी में पशु चारा का करें प्रबंधन और साथ ही मौसम के भी हमने के जानकारी लिहल जी। ई रहे आज के कार्यक्रम के छोटा सा विवरण और अब समय बा कि कुछ हमने के देश विदेश संबंधित कृषि समाचार जान ले जाओ तो पता ही का समाचार ले बनी रहुआ।
1: देखी सुगिया बहन, रोहिणी नक्षत्र के शुरू होखे वाला बा ओकरा साथे रोहतास आ कैमूर जिला में धान के बिचड़ा डाले के तैयारी शुरू हो गई बा। एकरा खातिर किसान भाई बहन लोग जुट गए बा। कृषि विज्ञानी लोग के अनुसार मौसम मिट्टी आ खेत के जल धारण क्षमता के अनुसार धान के किस्म के चयन करे के चाहिए। कहे कि भारतीय कृषि परंपरा में रोहिणी नक्षत्र के विशेष महत्व मानल जाला। ग्रामीण क्षेत्र में मान्यता बाकी रोहिणी नक्षत्र के दौरान कृषि कार्य विशेषकर धान के खेती के तैयारी शुभ मानल जाला। तो इस समय किसान खेत के तैयार करे में जुट जालन। धान के बीज डाले से पहले खेत के अच्छा तरह से जोताई कल जाला। खबर ये भी बा कि बिहार में किसान भाई बहन लोग के फार्मर रजिस्ट्री पर जोर दिहल जा रहा बा। राज्य के में किसान के डिजिटल पहचान आयोजना के लाभ आसान बनावे खातिर फार्मर रजिस्ट्री के महत्वपूर्ण बनावल जा रहा बा। भविष्य में कई गो कृषि योजना के लाभ ऐसे जुड़ सकेला। अगला खबर बा कि फसल नुकसान पर अनुदान आ राहत मिली। ओलावृष्टि तेज हवा आ बेमौसम बारिश से प्रभावित किसान लोग के कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राहत देवे के प्रक्रिया चलावल जा रहा बा। चना मसूर आ सरसों के MSP खरीद के भी मंजूरी मिल गई बा। बिहार में किसान भाई लोग खातिर चना मसूर आ सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से राहत मिले के खबर बा। एग्रो बिहार 2026 जैसन आयोजन में किसान भाई लोग के आधुनिक कृषि यंत्र नई तकनीक आ सरकारी सहायता योजना के जानकारी दिहल जा रहा बा। आ बिहार के कई जिला में बारिश आ गरज चमक के संभावना भी बतावल गई बा। आगे मौसम में हमने के विस्तार से बतावल जाई। आ बिहार में वेज फेड निजी कंपनी के साथ समझौता कैले बा ताकि सब्जियन के खरीद भंडारण आ बाजार व्यवस्था बेहतर हो सके। एकर उद्देश्य किसान भाई लोग के बेहतर दाम आ कम नुकसान दिलावे के बा। खबर ई भी बा कि किसान पंजीकरण आ DBT योजना के तहत कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा बा। एहमे बीज अनुदान कृषि इनपुट अनुदान आ अन्य योजना के लाभ भी मिल रहा बा। तो ई रहल हमने के आज के कृषि आ कृषि से संबंधित खबर। आगे का जानकारी मिले वाला बा बताएं
0: जी। बहुत अच्छा खबर देने रुआ समाचार सुनैनी। अभी हमने के भेंट वार्ता के माध्यम से कुछ जानकारी लिहल जाओ। विषय बा खरीफ में मोटे अनाजों की खेती और भेंट वार्ताकार बानी डॉक्टर धनंजय तिवारी और यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी।
1: देखी इतना समसामयिक विषय बा मोटा अनाज। आज सारा डॉक्टर ये लोग कह रहा बा कि भाई मोटा अनाज के सेवन करी तो आज जानल जाओ कर खेती कैसे होगा।
0: मोटा अनाज में सावा कोदो ज्वार बाजरा हाँ। रागी मकई ये सब चीज आवेला तो चले के जाने के
1: सुना जाओ सुना जाओ।
2: किसान भाइयों, आजकल मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। मोटे अनाज हैं क्या, कैसे इनकी खेती की जाए, इनकी उपयोगिता क्या है, इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर धनंजय तिवारी। आप सहायक प्राध्यापक हैं शस्य विज्ञान के, साथ ही साथ प्रभारी हैं फसल प्रक्षेत्र के नारायण कृषि संस्थान जमुहार में। डॉक्टर धनंजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि मोटे अनाज किसको कहते हैं।
3: किसान भाइयों, अगर मोटे अनाज की बात किया जाए तो मोटे अनाज को श्री अन्न या गरीबों के अनाज के रूप में भी जाना जाता है। दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला मोटा अनाज जिसमें ज्वार और बाजरा आते हैं, और दूसरा दाने के छोटे साइज के अनुसार या दानों के आधार पर बात किया जाए तो रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सांवा और कुटकी आदि आते हैं।
2: जी जी, अच्छा इनकी उपयोगिता क्या है मोटे अनाजों की।
3: किसान भाइयों, मोटे अनाज की अगर बात किया जाए तो मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए जितने

0: लाभकारी हैं, इनकी खेती भी उतनी सहज और सरल है। मोटे अनाज अपने पोषण से भरपूर गुड़ों के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही अगर किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो सीमित साधनों में भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं।
1: जी जी,
0: इसके साथ साथ मोटे अनाजों की खेती में दूसरे फसलों की अपेक्षा उर्वरक और रसायनों की जरूरत भी कम पड़ती है, इसलिए यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफ़ी बेहतर हैं और जिसकी वजह से कम उपजाऊ जमीन पर भी आसानी से उगाए जा सकते हैं।
1: जी, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि मोटे अनाजों को खाने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ये कैसे स्वास्थ्य लाभ देते हैं?
0: किसान भाइयों, अगर मोटे अनाज की बात करें तो स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मोटे अनाजों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि मोटे अनाज पोषक तत्वों और रेशों से परिपूर्ण होने के कारण इसका औषधीय उपयोग भी है और यह आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस का अच्छा स्रोत भी है। मोटे अनाज मधुमेह के मरीजों, ब्लड प्रेशर, हड्डी के रोग और पाचन क्रिया से संबंधित तथा वजन को कंट्रोल करने में तथा कब्ज की समस्या को दूर करने में भी लाभकारी होते हैं। इतने सब गुण होने के साथ ये हमारी सेहत के लिए सोने सा जैसा काम करते हैं। साथ ही अगर पशुओं की बात किया जाए तो पशुओं को चारे की भी उपलब्धता हो जाती है। वहीं बिहार जैसे राज्य में किसान भाई बाढ़ और सूखे दोनों समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस दिशा में किसान भाई अगर मोटे अनाजों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अधिक लाभ और उत्पादन प्राप्त होगा।
1: जी धनंजय तिवारी जी, किसी ज़माने में मोटे अनाजों की खेती खूब होती थी, हमारे क्षेत्र में भी होती थी, और आज केवल जो नई पीढ़ी है ज्वार बाजरा तो जानती है, लेकिन जो अन्य मोटे अनाजों की आप बात कर रहे हैं, रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावा, कुटकी, इसको कोई जानता तक नहीं है कि क्या है, लेकिन ये प्राचीन अन्न हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो इनकी खेती तो होनी चाहिए, लेकिन क्या कारण रहा कि इनकी खेती जो है कम हो गई, दिन प्रतिदिन कम होती गई और आज तो ऐसी हो गई कि कुछ फसलों जो श्री अन्न है उनके प्रजातियों को बचाना भी मुश्किल हो गया, ऐसा क्यों हुआ?
0: किसान भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में आधुनिकता के दौड़ में न केवल जीवन शैली में बदलाव आया है बल्कि हमारा खान पान भी पूरी तरह से बदल गया है। आज से 5 दशक पहले अगर बात करें तो हमारा खान पान बिल्कुल अलग था। मोटे अनाज हमारे भोजन के मुख्य घटक हुआ करते थे। साथ ही 60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती को अधिक महत्व दिया गया और परिणाम यह हुआ कि मोटे अनाजों के प्रति किसानों की रुचि कम होती चली गई और मोटे अनाजों का रकबा कम होता गया। लेकिन अब एक ऐसी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता है जिससे मोटे अनाज की पैदावार में वृद्धि हो सके। इससे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, भू जल ह्रास, स्वास्थ्य और खाद्यान्न जैसी समस्याओं को भी काबू किया जा सकता है।
1: जी अच्छा, मोटे अनाजों की खेती कब और कैसे किया जाए?
0: मोटे अनाजों की खेती करना बहुत आसान है, यह खरीफ की फसलें होती हैं। मोटे अनाजों की बुआई का उत्तम समय की अगर बात करें तो किसान भाई 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। जब भी खेत में पर्याप्त नमी हो तो इसकी बुआई कर देना चाहिए। किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए कि खेत में बुआई करते समय नमी अवश्य रहे, तभी इसकी बुआई करें।
1: जी जी धनंजय जी, ये फसलें कितने दिन में तैयार होती हैं?
0: किसान भाइयों, अगर मोटे अनाज की बात करें तो यह फसलें सामान्य तौर पर 70 से लेकर 115 या 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। ये निर्भर करता है कि किसान भाई किन फसलों का चुनाव कर रहे हैं, ज्वार का चुनाव कर रहे हैं, बाजरे का चुनाव कर रहे हैं या रागी का चुनाव कर रहे हैं। फसल की पकने की अवधि निर्भर करेगी किसान भाई कौन सी प्रजाति या कौन सी फसल का चुनाव किए हैं।
1: जी धनंजय जी, चूंकि हमारा क्षेत्र तो अब धान का क्षेत्र हो चुका है, तो धान जहाँ अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी पैदावार होती है और साथ साथ पैसा भी अच्छा मिलता है, वैसी स्थिति में मोटे अनाजों की खेती के लिए आप क्या सुझाव देंगे किसानों को कि क्यों करें?
0: किसान भाइयों, अक्सर यह देखा जाता है कि किसान पूरी तरह से धान की खेती में आश्रित होते हैं। उन्हें हमेशा यह सलाह दी जाती है कि धान की खेती के साथ साथ दूसरे विकल्पों को भी चुनें। अगर मोटे अनाज की खेती की बात की जाए तो किसान भाई विपरीत मौसम में भी रागी, ज्वार, बाजरा आदि की खेती कर सकते हैं। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, साथ ही कम लागत के अनुरूप

0: अधिक मुनाफा भी होता है और पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटे अनाज काफ़ी लाभकारी और फायदेमंद हैं।
1: जी, खरीफ की अगर बात करें मोटे अनाजों की, तो इसके लिए कैसी तैयारी चाहिए, मिट्टी की या खेत की कैसी तैयारी होनी चाहिए?
0: किसान भाइयों, किसी भी फसल को बोने से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी को तैयार करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर किसान भाई मिट्टी के अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो जब भी बीज की बुआई करेंगे, और मोटे अनाज की अगर बात करें तो बीज काफ़ी छोटा होता है, अगर भूमि अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगी तो जमाव अच्छे से नहीं होगा, जिससे किसान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी अच्छा, जैसे कि धान, गेहूँ या अन्य जो फसलें हैं
0: जी,
1: उनके उन्नत प्रभेदों को हम लोग लेते हैं ताकि अच्छा उत्पादन हो सके, तो क्या ये जो मोटे अनाज हैं जैसे मड़ुआ है, बाजरा है, सावा है, कोदो है, चीना है, काकुन है, इन सब का भी उन्नत प्रभेद इनके भी आ चुके हैं?
0: जी बिल्कुल
1: जी,
0: इसके लिए किसान भाई किसी कृषि विज्ञान केंद्र से या भरोसेमंद दुकान से किसान भाई इसको खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिले।
1: जी अब जैसे मड़ुआ के उन्नत प्रभेदों की बात करें तो कौन से प्रभेद हैं इनके?
0: किसान भाई अगर मड़ुआ की उन्नत प्रजाति की बात करते हैं तो BR 708, BL 352, GPO 28 और GPO 45 के साथ साथ 67, 85 और RU 8 है। अगर किसान भाई इनका चुनाव करते हैं तो निश्चित उन्हें अच्छा उत्पादन मिलेगा।
1: बाजरे की किस्म?
0: बाजरे की किस्म की अगर बात करें तो RHB 177, RHB 223 और RHB 234 के साथ HHB 299 बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त प्रजाति है, अगर किसान भाई इनका चुनाव करते हैं तो अधिक लाभ मिलेगा।
1: जी और अगर सावा की प्रजाति की बात करें तो कौन सी प्रजातियां आ गई हैं?
0: किसान भाई सावा की अगर बात करें तो BL 172, BL 207 और RU 3 और 9 बहुत उपयुक्त प्रजाति है, इसका किसान भाई चुनाव कर सकते हैं।
1: कोदों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
0: कोदों की अगर बात करते हैं तो JK 65, JK 76, JK 13, JK 155, JK 439।
1: जी ये प्रभेद हैं
0: जी।
1: और चीना की प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
0: चीना की अगर बात करें तो MS 4872 और 4874 तथा BR 7 बहुत ही उत्तम और उपयुक्त प्रजाति है।
1: काकुन की प्रजातियां?
0: काकुन के बारे में अगर किसान भाइयों बात करें तो RAU 2, CO 4 और अर्जुन बहुत ही उत्तम और अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है।
1: जी ये तो प्रजाति की बात हो गई
0: जी।
1: मोटे अनाजों की अगर हम बीज दर की बात करें तो कितना बीज लगता है, अगर हेक्टर में बात करें तो कितना लगता है?
0: किसान भाइयों जैसा
1: बीघा की बात करें तो उसमें कितना लगेगा?
0: किसान भाइयों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटे अनाजों का दाना काफ़ी छोटा होता है, तो इसका बीज की मात्रा कम लगती है। अगर मोटे अनाजों की बात करें तो प्रति बीघा में 2.5 से 3 किलोग्राम तथा सावा और कोदो चीना की बात करें तो 2.5 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।
1: जी जी अच्छा, बीज की बुआई कैसे करनी चाहिए?
0: बीज की बुआई सामान्य तौर पर किसान छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं, और लाइन में अगर बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे लाइन में बोना ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर पंक्ति से पंक्ति, जैसा कि कहा गया है पंक्ति में शक्ति, अगर किसान भाई पंक्ति में बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें अधिक उत्पादन मिलेगा।
1: जी जी अच्छा, खाद उर्वरक की अगर बात करें तो उसमें कितना पोषक तत्व देना चाहिए?
0: किसी भी फसल में किसान भाइयों पोषक तत्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पोषक तत्व से ही पौधे को भोजन मिलता है। अगर सही उत्पादन किसान भाइयों को चाहिए तो पोषक तत्व प्रबंधन उचित होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम की अगर बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन मिले।
1: अच्छा, क्या इनकी सिंचाई भी करनी आवश्यक है?
0: किसान भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटा अनाज सामान्य तौर पर बरसात में लगाया जाता है, तो सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, और मोटे अनाज में सिंचाई की आवश्यकता भी कम होने के साथ साथ इसमें जब क्रांतिक अवस्थाएं, जब ये लगे कि नमी नहीं है खेत में, तो उस किसी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना महत्वपूर्ण होता है।
1: जी अच्छा, ये जो मोटे अनाज हैं इनमें क्या खरपतवार नियंत्रण भी करना जरूरी है?
0: बिल्कुल, जैसा कि

0: हम सभी जानते हैं खरपतवार से हमारे जो पौधे होते हैं फसल के आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं खाद पानी और चीज़ों के लिए, तो इससे फसल की वृद्धि विकास प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों को समयानुसार समय समय पर जब भी आवश्यकता हो तो खरपतवार प्रबंधन अवश्य करना चाहिए, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और उत्पादन अच्छा प्राप्त हो।
1: कितनी सिंचाई करनी चाहिए मोटे अनाजों की?
0: किसान भाइयों, मोटे अनाज की अगर बात करें तो 2-3 सिंचाइयाँ पर्याप्त रहती हैं। ये निर्भर करेगा कि खेत में आपकी नमी कैसी है और वहाँ की वातावरण और जलवायु के साथ साथ वहाँ की मिट्टी कैसी है, उस पर निर्भर करेगा।
1: जी अच्छा, फसल सुरक्षा की अगर बात करें तो अन्य फसलों में जैसे सुरक्षा हम लोग करते हैं, रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो क्या मोटे अनाजों में भी रोग कीट लगते हैं क्या?
0: किसान भाइयों, अगर मोटे अनाज की बात करें तो इसमें रोग और कीटों का खतरा कम होता है, लेकिन अगर किसी कारण से इसमें रोग और कीटों का प्रकोप होता है तो जिस तरीके से बीमारी या कीट उसमें लगे हैं, किसान भाई किसी वैज्ञानिक से सलाह लेकर के उचित रसायन का छिड़काव करें, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो।
1: जी अच्छा, फसल की कटाई जो मोटे अनाज हैं ये कितने दिन में पक के तैयार हो जाते हैं और कब करनी चाहिए इनकी कटाई?
0: फसल की कटाई फसल की प्रजाति पर निर्भर करेगा और किसान भाई किस प्रजाति का चुनाव किए हैं, साथ ही कौन सी फसल लगाए हैं, इस पर भी निर्भर करता है। और किसान भाई को फसल की कटाई करते समय या सावधानी बरतनी चाहिए कि उनकी फसल अच्छी पक गई है या नहीं। अगर अच्छी नहीं पकी होगी तो किसान जब इसका भंडारण करेंगे तो कीट और पतंगों का भी प्रकोप बढ़ेगा। तो इन सब अगर बातों को किसान भाई ध्यान में रख करके कटाई करते हैं तो सामान्य तौर पर 100 से 115 दिन में ये प्रजाति पक करके तैयार हो जाती है।
1: जी तो डॉक्टर धनंजय तिवारी आप आए और मोटे अनाजों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी ताकि किसान भाई हमारे उत्साहित हो सकें और इन अनाजों की खेती कर सकें। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखिए सुगिया बहिन,
3: जी
2: ये डॉक्टर धनंजय तिवारी कितना बढ़िया से अफरिया फरिया के खरीफ में मोटा
3: मोटा
2: अनाज
3: अनाज की
2: के
3: खेती के बारे में हमने के बताई नहीं और यहाँ से खूब बढ़िया से जानकारी लेनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी लोग के बहुत बहुत है सुंदर सा जानकारी खातिर धन्यवाद। आगे हमने के फिर अपना चर्चा पर आवल जाए लेकिन एक संदेश की बात
2: सुन।
4: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है।

0: इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
6: देखिए पंचू भाई, अच्छा फसल पावे खातिर सिर्फ खेत के तैयारी और खाद देना ही काफी नहीं है, बल्कि अच्छा और शुद्ध बीज के चुनाव तथा बीज शोधन भी उतने जरूरी बा। यदि हम बिना बीज शोधन किए बीज बोआ तो नहीं जा, तो बीज के साथ कई प्रकार के रोग और फफूंद खेत में पहुंच जाला, जना से फसल कमजोर हो सकता। अब बात ई बा कि बीज शोधन ह का। बीज शोधन के मतलब है बुआई से पहले बीज के दवा या जैविक तरीका से उपचारित करना, ताकि बीज रोग मुक्त हो और अंकुरण अच्छा हो। धान के बीज जोन बा ओकर शोधन करे के बहुत सारा फायदा बा। पहला बा, बीज जनित रोग के बचाव होला, अंकुरण क्षमता और अच्छा हो जाला, पौधा मजबूत बनेला और उत्पादन वृद्धि में वृद्धि होला। अब सवाल बा कि बीज शोधन कैसे कर जाओ। सबसे पहले अच्छा बीज और स्वास्थ्य बीज चुनी, नमक के घोल में बीज डाल के हल्का और खराब बीज अलग कर सकता नहीं, ओकरा बाद साफ पानी से बीज के धो ली। फिर कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार फफूंदी नाशक दवा या जैविक उपचार से बीज शोधन करी। आजकल ट्राइकोडर्मा जैसन जैविक उपचार भी काफी उपयोगी बा। अंत में बस यही संदेश दिया चाहब कि स्वस्थ बीज सुरक्षित फसल और खुशहाल किसान। धान के बुआई से पहले बीज शोधन जरूर करें और अपना खेत के उपज बढ़ाएं।
7: आ देखी एगो नसीहत बा कि गर्मी में पशु चारा के प्रबंधन कैसे कर जा सके। तापमान बढ़े से पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और उनका कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। यह मौसम में हरा चारा के कमी के चलते पानी के अधिक आवश्यकता, गर्मी के तनाव के चलते पशुओं के विशेष देखभाल आदि की जरूरत होला। ऐसे गर्मी में पशु चारा प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाला। हमने के ध्यान रखे के चाहिए संतुलित आहार, हरा चारा के व्यवस्था, सूखा चारा के सही उपयोग, स्वच्छ आ पर्याप्त पानी आ चारा भंडारण के व्यवस्था करे के चाहिए
6: जी।
7: अब देखी आज के मौसम के भी बारे में जान लिया जाओ तो सुगिया बहन, मौसम पूर्वानुमान बा कि अधिकतम 43 डिग्री आ न्यूनतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रही। आसमान की स्थिति ये बा कि काल है सुबह हल्का बादल, दिन में मुख्यतः साफ आ तेज धूप
6: जी।
7: बारिश के संभावना बहुत कम बा। हवा के गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकेला आ लू जैसन स्थिति बनल रही।
6: तो हमनी के सेहत के ध्यान में रखते हुए गर्मी के प्रकोप से बचे के संभावना नसीहत दिया जाता।
7: तो आज के देखी

0: एक कार्यक्रम के समय और आ गई, बेरा हो गई विदा लेवे के, तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम,
1: साथ ही साथ सुगिया बहन की तरफ से भी सब श्रोता भाई के नमस्कार, पंचू भाई रवा के भी नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

0: असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभ दास वंची भोपाल श्री रामवर्मा।
1: श्रोता दोस्तों, इस वक्त आप अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं बलम परदेसिया फिल्म का ये गीत।
2: गोर की पतर की रे

दंगल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज़ में कुलवंत जैन के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। एक बार फिर से यही कलाकार यानी आशा भोसले, कुलवंत जैन और नदीम श्रवण के द्वारा सजा हुआ एक गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म भी वही, दंगल।

आइए दोस्तों, धरती मैया फिल्म का एक गीत सुना जाए, आवाज़ आशा भोसले की। लक्ष्मण शाहबादी हैं गीतकार और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

के देखो तू एक बिरिया, हंसी के देखो तू

बलम परदेसिया फिल्म के इस गाने के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

आइए स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले एक अच्छी और सच्ची बात, आमदनी के मामले में सासाराम जंक्शन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। गत वित्तीय वर्ष में इस स्टेशन ने 55 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन में 19वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 22वें स्थान पर था। वहीं डेहरी स्टेशन 20वें स्थान पर बना हुआ है। बात गर्मी और धूप की। रोहतास जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी व लू के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, ताकि लोगों को लू के प्रभाव से बचाव किया जा सके। गर्मी की लिहाज से सासाराम देश में प्रमुख शहरों में से एक रहा। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी एवं तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। डीएम उदिता सिंह ने आमजनों से सतर्क रहने एवं बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। सोमवार को जिले का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया था। सुबह से ही चेहरा झुलसने वाली धूप व गर्म भरी हवा चलने लगी थी। गर्म हवाओं एवं लू के प्रभाव से बचने के लिए सभी नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा सतर्क रहने तथा आवश्यक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि लू एवं अत्यधिक गर्मी से

के दुष्प्रभाव से लोग बच सकें। लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग रोहतास ने गाइडलाइन जारी की है। लू लगे व्यक्ति को छांव में पैर ऊंचा कर लिटा दें तथा तंग कपड़ों को ढीला कर दें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर पंखे से हवा करें। ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोछें एवं ठंडे पानी से नहलाएं। रोगी को ORS घोल, नींबू पानी, साधारण पानी, नमक पानी का घोल पिलाएं। यदि व्यक्ति पानी की उल्टी करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने को न दें। तुरंत सरकारी या नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान में ले जाएं। जिले के सभी अस्पतालों में विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में 12 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 बेड लू लगने के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। लू लगे पेशेंट्स के लिए अलग से बनाए गए हैं। सदर अस्पताल में विशेष वार्ड में ORS घोल, ठंडा पानी, ग्लूकोज पानी मौजूद है तथा मरीजों के शरीर के तापमान को कम करने के लिए आइस पैक की व्यवस्था भी की गई है। आपातकालीन स्वास्थ्य टीम डॉक्टर एवं नर्सों की विशेष टीम 24 घंटे तैयार है। विशेष जानकारी के लिए हेल्प डेस्क काउंटर 8544421740। आपकी सुविधा के लिए फ़ोन नंबर फिर से दोहरा दें 8544-21740 से संपर्क किया जा सकता है। और अब आइए आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में।

0: श्रोता दोस्तों, हमें खेद है ये गीत हम आप तक पूरा पूरा नहीं पहुंचा सके। वक्त मिलने पर इस गीत को हम आप तक पूरा ज़रूर पहुंचाएंगे। आप ज़रूर इस गीत को पूरा पूरा सुनेंगे। कृपया हमारे प्रसारण को निरंतर सुनते रहिए।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

का बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष किए पूरे। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया

0: और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं समेत विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया। पुस्तक में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर निर्णय देश की प्रगति और विकास के लिए लिया है।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव ने कहा कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी हैं। श्री यादव ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के निर्णयों से देश कठिन परिस्थितियों में विकास पथ पर अग्रसर रहा है।
2: कोरोना के काल से निकाल करके हिंदुस्तान की आवाम को आगे ले जाने का काम, पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत और क्षमता रखने का काम, ये मोदी के कुशल नेतृत्व का ही तो परिणाम है जो 12 साल का है। एक नहीं अनेकों काम किया है। तो कई ऐसे इशू थे जिस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया है और देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामना, बधाई, स्वस्थ रहें और देश के सेवा करते रहें।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश की बड़ी ताकत है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहली बार शपथ लेते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प को वे पूरा करने में जुटे हुए हैं।
3: 12 वर्ष हुए हैं, ठीक 12 वर्ष पूर्व 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ लिया था और उस शपथ को पूरा होते देख, उस संकल्प को पूरा होते देख हम आज देख रहे हैं। 12 वर्ष पूर्व हमारे देश को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज हम टॉप 5 की ओर तीव्रता से अग्रसर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 12 वर्ष का जो वर्षगांठ है, यह हमें एक मौका देता है, समय देता है कि हम इसका मूल्यांकन करें और इन बातों को जन जन तक लेकर के जाएं।
0: केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री शाह ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति देश भर में घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से जनसांख्यिकीय बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को ही कराए जाने की

0: घोषणा की है। जदयू की वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रावैधिकी की एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने दावा किया है कि विधान परिषद की सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास है।
1: जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से बंगाल का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे।
0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला कर लेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी।
2: एनडीए मिलकर जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और एनडीए एकजुट है और जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए 1 सीट की मांग की है। श्री मोझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमको परिषद चुनाव में सीटें मिलने से गठबंधन को फायदा होगा।
3: हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है, हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें।
0: राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री सरावगी ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के मुख्य रस्म को पूरा कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव के कारण अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
7: दिनांक 27 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक

0: मिलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि आंधी के कारण अलीगंज स्थित आकाशवाणी का टावर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। हालांकि FM और न्यूज ऑन AIR ऐप से समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण सुना जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ है, जो 27 मई तक जारी रहेगा। मेले के पहले दिन कल 13,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। इनमें 1,876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया। मेले के दूसरे दिन आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेले में आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार की यह अच्छी पहल है।
3: भरोसेमंद मेला है, के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार की अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई ITI किया है उसको भी जॉब मिल रहा है, और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे तो हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
2: रोजगार मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने से खुशी का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से प्रियंका मिश्रा।
1: पटना ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेंस T20 ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मोइनुल हक स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पटना की टीम ने बेगूसराय को 23 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीयूष सिंह के धुआंधार 92 रन की बदौलत पटना ने 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में बेगूसराय की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के गांधी घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, ऐसी घटना फिर से ना हो इसके लिए घाट पर एक विशेष टीम तैनात कर दी गई है। भवन निर्माण मंत्री सह मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने आज DRDA सभागार में जिले में बाढ़ और सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सीतामढ़ी जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली, जहां लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान राज्य की उद्योग मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह भी सहयोग शिविर में शामिल होने पहुंची। उनके आगमन पर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के अथरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सीधे सहयोग शिविर में आए ताकि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इधर जिले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद ठाकुर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा तथा विपक्ष पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड स्थित महुआबा पंचायत ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है। पंचायत को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और सौर ऊर्जा आधारित नवाचारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। महुआबा पंचायत की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए इसे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नगर परिषद जनकपुर रोड पुपड़ी के जेई विजय शर्मा को निगरानी विभाग की टीम ने 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एग्री एस्टेक परियोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी रिचि पांडे को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सम्मानित किया गया। फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत जिले में अब तक 1,80,000 से अधिक किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। सीतामढ़ी जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक जिले की 50,000 से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
1: सीतामढ़ी जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी

आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कुछ भजन। कलाकार हैं शुभ्रा चटर्जी। प्रस्तुत है पहले इनकी आवाज में सूरदास की ये भक्ति रचना।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मन पसंद।

कितनी गौर से मेरी निगाहों ने देखा होगा तेरा चेहरा कि तुम्हें बाद कोई चेहरा अच्छा ही नहीं लगा।

ये पहली प्रस्तुति थी, लेकिन शानदार प्रस्तुति, पसंद आप सबों की थी। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, पद्मा टाकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से। मरहरा दरवाजा एटा से आप हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, सिकंदर राव से मोबीन अब्बासी और इशरत परवीन। गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। और इसी गीत को सुनना चाहते थे कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। और दोस्तों सच कहें तो सुनने वाले और पसंद करने वालों में आप मेरा भी नाम शामिल करने तो बड़ी मेहरबानी। फिलहाल आइए अभिमान फिल्म का एक और खूबसूरत हिट नगमा आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि ये गीत हमारे किन प्रिय श्रोताओं की पसंद है। पहले आइए सुन लेते हैं।

दोस्तों आप तक हम अगला नगमा भी पहुंचाएंगे, लेकिन लेकिन ये बताइए कि इस गर्मी में, इस धूप में आकाशवाणी सासाराम की ये जो प्रस्तुति है ना, जिसे आप सजाते हैं, आप संवारते हैं और आप सुनते भी हैं, हम तो सिर्फ सुनवाते हैं और आपकी ख्वाहिश आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत गीतों को सुनने के बाद और ये प्रोग्राम सुनने के बाद क्या इस तपिश में भी आप कुछ आनंदित होते हैं? होते हैं ना? तो चलिए, ये जानकर हमें बहुत खुशी होगी कि आप आनंदित होते हैं अपने ही चुने हुए गानों को सुनकर, और हमें उससे भी ज़्यादा खुशी होती है आपकी ख्वाहिश आप तक पहुंचाकर। जो अभी आप गाना सुने उसके लिए हमें कहाँ से मेल आया है ये हम, अच्छा एक बात और गुजारिश करेंगे आपसे, आप सब से, कि जब आप हमें मेल करें तो सिर्फ गाने का बोल, फिल्म और अपना नाम और पता, बस बस बस बस, इसके अलावे और कुछ चाहिए नहीं, बस आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, उसी के माध्यम से हम तक पहुंच जाती है, इसलिए ज़्यादा कुछ बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

इससे ये होता है कि हम तुरंत आपके नाम को कहाँ से आप लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। और फिलहाल चलिए हम पढ़ते हैं हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत सुनना चाहते थे कहाँ से। अच्छा पहले नाम, हाँ ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत आप सब हैं गोविंदपुर सीकर राजस्थान से। हिंदुस्तान रेडियो मित्र से आप, हाँ रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा भी इसी गीत को सुनना चाहते थे और इसी गीत को सुनना चाहते थे। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा, नया नगर सुपौल बिहार से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। ये मेल दोस्तों बार बार आता है और हर बार आता है, इनका प्यार और मोहब्बत हमें बहुत स्वीकार है, लेकिन इसमें दो नाम फलना झा और चिलना झा समझ नहीं आता कि ये वास्तव में नाम है या फिर इस मेल को सुंदर और खूबसूरत बनाने के नज़रिए से आप इसमें जोड़ देते हैं। और जो भी आप जोड़ते हैं भाई हम तो पढ़ेंगे ही, इसलिए पढ़ते हैं। फिलहाल आइए, पढ़ते नहीं हैं, आपको सुनवा रहे हैं कुछ संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और अब बारी है हमारे इन श्रोता दोस्तों की। पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, उस्मान अली अंसारी, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर और राजेश, राकेश, ऋषिता।

अश्रोता दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं, नहीं वो पहुंच चुके हैं हम तक। अब हम सिर्फ उनकी ख्वाहिश को उन तक पहुंचाने जा रहे हैं। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा जी, कपिल छिंपा जी, पूजा परिहार जी, इनकी पसंद पर चोरी चोरी फिल्म का हम आपको गाना सुनवाना चाहते हैं। और इसी गाने के लिए और मेल हमें मिले हैं, वो कहाँ से ये भी हम आपको पढ़कर सुना दें। जी, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डंगरी से बाबूराम जायसवाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, आप सबों की फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

और आप हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से उस्मान अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, सनबूर परवीन अंसारी और गुड़िया अंसारी, अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से आसिफ अली अंसारी, शुमेला परवीन अंसारी, नूरी परवीन अंसारी, रियाज सऊदी अरब से अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

प्रेम पुजारी, जी हाँ, ये उस फिल्म का नाम है जिस फिल्म का एक गाना हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत वो गीत है, आप तक हम पहुंचाएंगे। इससे पहले लीजिए सुनिए हमारे श्रोताओं के नाम और जगह कहां से ये मेल मिला है हमें। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा,

इसी गीत को सुनना चाहते हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद सीतामुनि देवी लालसा कुमारी काजल कुमारी पद्मन और प्रीतम कुमार और गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से आप हैं राजकुमार और जानकी देवी।

ब्लैकमेल फिल्म का एक गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू।

नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।

0: और अब बारी है हमारे इन श्रोताओं की। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से आप हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। और जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। आप सबों की पसंद है मर्यादा फिल्म का ये गीत।
1: अरे चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा।
0: इस गीत को सुनना चाहते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से आप हैं निकहत प्रवीण और सदफ आरजू।

वार्ड गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, ओम रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी नांदेड़ महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोताओं के नाम रहे।

कोहिनूर फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाहकर, निर्मला नवाहकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मुरहेरकर।

जिंदगी का कोई एहसान नहीं है मुझ पर, मैं दुनिया में हर सांस की कीमत चुकाई है। दोस्तों, ये वही कह सकता है जो बिल्कुल 100% यानी पूरा पूरा कर्मठ हो और अपने गोल को पा गया हो, अपने जिंदगी में सफल हो और पूरा पूरा सफल हो। ऐसे लोग जो कर्मठ हैं वो ये जरूर कह सकते हैं। और इस नामों के फहरिस्त में अगर मेरा नाम आप जोड़ें तो मैं कहूँगा कि जी नहीं, मैं नहीं कह सकता। और अब इसी के साथ ओम प्रकाश को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्ते, कल फिर मुलाकात होगी इसी मीटर बैंड पर इसी समय।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम ई मन पसंद अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा

0: स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: Economic resilience should be promoted.
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: Undertake more exchanges as we intend to do.
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है।

इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सब

0: का विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

डिम डिम डमरू बजावे ले हमार जोगिया, अनुपमा सरन की आवाज़ में अभी आप ये भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं भरत सिंह भारती और साथियों की आवाज़ों में ये भोजपुरी लोकगीत।

गोदवाले गोदना गोदवाले गोदना गोरी गोदवाले गोदना कि ऐसे

भरत सिंह भारती और उनके साथियों को सुनने के बाद अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये भोजपुरी लोकगीत।

इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पेशे खिदमत है गजल का प्रोग्राम महफिल। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं हरिहरन की गाई इस गजल से।

करार एल्बम का ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में, डॉक्टर शफी हसन के लिखे इस कलाम की धुन बनाई थी खुद हरिहरन ने। अब आइए महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं गुलाम अली की आवाज़ में संत दर्शन सिंह जी महाराज का लिखा एक कलाम, मौशिकी अलाउद्दीन खान की है आवाज़, गुलाम अली की, एल्बम का नाम कलामे मोहब्बत।

गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं मुकम्मल हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनू वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ माय गॉड ओ माय गॉड।
3: जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाई

युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल। उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंप कर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वा बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।
1: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। पेश है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग।

अब के बरस एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनीता राव की आवाज में। श्रोता दोस्तों, आप सब ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं, इससे पहले सुनिए कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आओ इसकरे एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। और रसन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अदीबा मेरे दिल से एल्बम का एक गीत हजरत मिस्री शाह की आवाज में।

अदीवा मेरे दिल से एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे हजरत मिश्री शाह की आवाज में। अब आइए अफसाना एल्बम का एक गीत सुना जाए सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है। अभी आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। और अब आइए सुनते हैं एहसास एल्बम का ये गीत, अनुराधा पौडवाल और श्रीनिवास की आवाजें हैं।

अनुराधा पौडवाल और श्रीनिवास के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

मेरे जीवन साथी इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। मजरूह के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए चित्रपट तराने कार्यक्रम में सुना जाए बप्पी लहरी को। इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन बप्पी लहरी ने खुद बनाई है। फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा।

चित्रपट तराने कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का एक गीत। शान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें हैं। समीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवा रहे हैं मनचली फिल्म का एक गीत। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मनचले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। रोज की तरह कल भी हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे प्रातः 5:53 पर। प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी हम प्रस्तुत करेंगे 8:20 पर।

कल सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किया जाएगा। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका की प्रस्तुति होगी सुबह 9:10 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। हिंदी समाचार पूर्वाह्न 10 आप सुनेंगे, जो प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से पुनर्नवा कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे पूर्वाह्न 10:05 पर। 10:30 पर सुनिए भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार की प्रस्तुति होगी पूर्वाह्न 10:45 पर। पूर्वाह्न 11 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में, और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6 और शाम 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार।

गांव घर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। कार्यक्रम सांझ गीत आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं भोजपुरी फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस की प्रस्तुति होगी शाम 7:00। शाम 7:05 पर सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समय होगा शाम 7:25। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। समाचार संध्या हम रिले करेंगे सुबह 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ की प्रस्तुति होगी 9:00। कल 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम प्रस्तुत करेंगे 10:00। 10:30 पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। और रोज की तरह कल भी 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 11:00 चाहते हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार और हिंदी समाचारों के ठीक बाद 11:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी

हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में

0: न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड। ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली। External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who